होश उड़े हैं या हुई है आंख बंद, फूंकते क्यों कर नहीं शोले बुलंद, तुझ पे जादू कर दिया या सीमिया, या फकत मुझसे हुई है तू खफा, आग बोली में अभी तक आग हूं. Here the fire begins to reply. आग बोली में अभी तक आग हूं. Now the fire said, I'm still a fire. आग बोली में अभी तक आग हूं, अंदर आते ही तुझको फूंक दूं, ना तबीयत बदली ना अंसर मेरी, तीग हक हूं काटती हूं हुक्म से, दर पे कुत्ता कसर के दरबान का, आश ना रहता है बस मेहमान का, कर गोई बेगान आए कसर पर, दौड़ते कुत्ता उस पे मिसले शेर नर, बंदगी में मैं नहीं कुत्ते से कम, जिंदगी में हक न दरबान से है कम, आतिश तबा तुझे कर गमगीन कर, आतिश तबा तुझे गर गमगीन करे, अम्र हक से उस गमी को जान ले, आतिश तबा तुझे तुझको अगर खुश करे, अम्र हक से उस खुशी को जान ले, जो के गम देखे तो इस्तिगफार कर, हुक्म हक से या है गम का अगर, हुक्म हक से आया है गम का अगर, वो जो चाहे ऐन गम हुए खुशी, कैद तुझको ऐन हो आजादगी, बंदा आबो खाको बादो आग है, मुर्दा हमसे जिंदा हक के सामने, मुर्दा हमसे जिंदा हक के सामने, पेश हक दाइम रखे आतिश कयाम, मिसले फासिक मिसले आशिक रात दिन बेजान मदाम, आग निकले संग आहिन जो लड़े, हुक्म हक से वो कदम बाहिर रखे, संग आहन खुद सबब आया ओले, कर तुबाला पर नजर ए मर्द नेक, लाया जाहिर उस सबब का वो सबब, बेसबब के कब पैदा हो सबब, के कब ये पैदा हो सबब, उस सबब को वो सबब आमिल करे, और कभी उसको वो बे हासिल करे, अंबिया के जो सबब है राहबर, उन सबब से वो सबब है पेशतर, इस सबब की अक्ल है आगाकार, उस सबब के अंबिया है राजदार, कहते हैं अरबी में रस्सी को सबब, चाहे दुनिया में ये रस्सी है सबब, चरख की गर्दिश है रस्सी का सबब, चरख वाले को न देखे हो तब, इस सबब की रस्सियों को तू यहां, चरख सरकर्ता से मत जा ए मियां, ताना सिफरो चरख से सरगर्दा रहे, ताना बनकर चीर को तू जलता रहे, बादो आतिश अम्र हक से होती हैं, मस्त दोनों खमर हक से होती है, हिल्म का आब और आतिश चश्म की, हक से पाए तू जो समझे ऐ अखी, गर न होती हक से वाकिफ जान बाद, फर्क कब करती मियां कौम आद. Brothers, that is it. That is the whole story, and I've given you this for two reasons. Many of you don't understand it, but this is the classical method and manner by which this poem was written, or these couplets were written by Maulana Rumi Rahmatullah Alayh, obviously in the Persian language. But it is fascinating how all those that time ago such fine literature was compiled in the early days. We now continue with where we left off last week. We have basically finished the entire story of Nabi Ibrahim alayhi salam and Namrud and Shaitan. Just there are two matters I wish to state before I conclude the story of Nabi Ibrahim alayhi salam, Namrud and Shaitan. One deals with the period of the Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajmain, and the second deals with English commentaries of the Quran Majid. Let us take the first matter first. The first matter we deal with is as follows. Allah subhanahu wa ta'ala sometimes imbues his devoted servants and slaves.

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क